0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, चीन के शंघाई में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को 21वीं सदी में मानवता के लिए सबसे बड़ा अवसर बताया। साथ ही उन्होंने आगाह किया है कि यह सबसे बड़े जोखिमों में से एक भी बन सकती है। उन्होंने सरकारों और प्रौद्योगिकी कंपनियों से आग्रह किया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का लाभ केवल कुछ देशों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचे। महासचिव ने AI का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए 3 प्राथमिकताएं रेखांकित की: विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक तय करना और AI को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक टिकाऊ बनाना। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस चीन के आधिकारिक दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शंघाई में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन को संबोधित किया। UN प्रमुख ने सरकारों और प्रौद्योगिकी कंपनियों से आग्रह किया कि AI का लाभ केवल कुछ देशों या कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचे। महासचिव ने कहा कि AI का प्रशासन मुट्ठी भर देशों या कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए और हर देश को निर्णय प्रक्रिया में बराबर स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाने, साझा सुरक्षा मानक तय करने और AI को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बनाने पर जोर दिया। UN प्रमुख ने बड़ी AI कंपनियों से अपनी प्रणालियों के पर्यावरणीय प्रभाव की जानकारी सार्वजनिक करने और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से कामकाज संचालित करने का भी आह्वान किया।
2: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में इस महीने 27 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व संयुक्त जन कार्यवाही समिति JAAC कर रही है, जिसमें व्यापारी, परिवहन कर्मी, छात्र, वकील, नागरिक समाज कार्यकर्ता और अन्य समूह शामिल हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने क्षेत्रीय चुनावों से पहले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में शांति बनाए रखने की अपील की है। 27 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जून से अब तक कथित रूप से दर्जनों लोगों की मौत हुई है। इनमें अधिकतर प्रदर्शनकारी हैं। OHCHR ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई, नागरिक समाज संगठन पर प्रतिबंध और नेताओं की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। UN मानवाधिकार कार्यालय ने इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बहाल करने और मूल शिकायतों के समाधान के लिए सार्थक व समावेशी राजनीतिक संवाद का रास्ता अपनाने का आग्रह किया है।
2: संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी IOM और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR, जो एशिया प्रशांत क्षेत्रों में खतरनाक यात्राएं कर रहे संवेदनशील लोगों की तलाश व बचाव, सुरक्षित आगमन, संरक्षण एवं टिकाऊ समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकारों के साथ मिलकर काम करते हैं, ने बताया कि जून के अंत में म्यांमार के राखिन प्रांत से 2 नौकाएं रवाना हुई थीं। लगभग 250 लोगों को ले जा रही पहली नौका के रवाना होने के कुछ ही समय बाद उससे संपर्क टूट गया। वहीं 280 लोगों को दे जा रही दूसरी नौका ने 8 जुलाई को म्यांमार के अययार वाडी तट के पास डूबने की आशंका है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: म्यांमार के तट के पास दो नौकाएं पलटने की आशंका के बाद उन पर सवार लगभग 500 लोगों की सलामती को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। IOM और UNHCR ने संयुक्त चेतावनी जारी करते हुए बताया कि ये नौकाएं जून के अंत में म्यांमार के राखीन प्रांत से रवाना हुई थीं। इनमें अधिकतर रोहिंग्या समुदाय के लोग थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफान दुजैरिक कह रहे हैं, इन खबरों से स्पष्ट है कि लंबे समय से जारी संघर्ष विस्थापन और रोहिंग्या समुदायों के लिए टिकाऊ समाधान की कमी का असर कितना विनाशकारी है। म्यांमार में बढ़ता संघर्ष और बिगड़ती मानवीय स्थिति, साथ ही बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में सीमित सहायता और अवसर, लोगों को सुरक्षा की तलाश में खतरनाक समुद्री यात्राएं करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। IOM और UNHCR ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ाने, विस्थापन के कारणों से निपटने और इस घातक समुद्री मार्ग पर और मौतें होने से रोकने की अपील की है।
2: संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बुंडी बुंगियो प्रकार के इबोला संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। अधिकांश नए मामले संक्रमण की उन कड़ियों से जुड़े हैं जिनका स्रोत अब तक अज्ञात है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संक्रमण कहाँ से और कैसे फैला। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: WHO ने चेतावनी दी है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में इबोला प्रकोप राहत प्रयासों से कहीं तेजी से फैल रहा है। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेसस ने बताया कि अब तक 2,273 मामले सामने आए हैं और 796 लोगों की मौत हुई है। ये अब तक दर्ज इबोला का तीसरा सबसे बड़ा प्रकोप बन चुका है। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेसस कह रहे हैं कि DRC सरकार द्वारा इबोला महामारी की घोषणा किए 2 महीने हो गए हैं। तब से ये प्रकोप तेजी से फैला है। ये अब तक का तीसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप है और पिछले महीने में ये किसी भी पिछले प्रकोप से अधिक तेजी से बढ़ा है। ये थे WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेसस के शब्द। WHO के अनुसार DRC में संक्रमण की कड़ियां अब भी पकड़ से बाहर हैं। वहीं पड़ोसी युगांडा में आखिरी मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर आ गया है, जिसके बाद प्रकोप समाप्त घोषित करने की 42 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
2: संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों SDGs के लिए $4 ट्रिलियन की वित्तीय कमी दूर करने के उद्देश्य से नए सुधारों पर सहमति जताई है। बुधवार 15 जुलाई को अपनाए गए घोषणा पत्र में उन्होंने 2030 एजेंडा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ज्यादातर धन घरेलू स्रोतों से आता है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों यानी SDGs के लिए $4 ट्रिलियन की वित्तीय कमी दूर करने के उद्देश्य से नए सुधारों पर सहमति जताई। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के समापन पर अपनाए गए घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने 2030 एजेंडा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इन सुधारों में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाना, विकासशील देशों के लिए ऋण राहत के विकल्पों का विस्तार करना और भ्रष्टाचार से निपटना शामिल है। ECOSOC के अध्यक्ष लोक बहादुर थापा ने कहा कि ये परिणाम दिखाता है कि संवाद और समझौते के जरिए बहुपक्षवाद ठोस नतीजे दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अगले 5 वर्ष SDG के वादों को पूरा करने और 2030 के बाद के भविष्य की नींव रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को एक तार संदेश प्रेषित कर इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला के 85वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं अर्पित कर अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया। तार संदेश में संत पापा लियो 14वें ने इटली के कलीसियाई और सामाजिक जीवन पर लगातार ध्यान देने के लिए राष्ट्रपति महोदय के प्रति गहन आभार व्यक्त किया। इस संदेश में राष्ट्रपति के परिवार, उनके सहयोगियों और उनके प्रिय देश इटली के लिए संत पापा लियो ने शुभकामनाओं के साथ साथ अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया। संत पापा ने संपूर्ण इटली एवं राष्ट्रपति मत्तारेला को इटली के संतों असीसी के संत फ्रांसिस और सियेना की संत कैथरीन के संरक्षण के सुपुर्द भी किया। स्मरण रहे कि संत पापा लियो 14वें ने 14 अक्टूबर 2025 को क्विरिनाले पैलेस अर्थात इटली के राष्ट्रपति भवन का दौरा किया था, जहां उन्होंने यूरोप में परिवारों के लिए बहुपक्षीयवाद और समर्थन को महत्वपूर्ण बताते हुए इटली की जन्म दर में निरंतर आती गिरावट के प्रति ध्यान आकर्षित कराया था। इस अवसर पर उन्होंने विश्व में व्याप्त युद्धों का भी जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी कि वे उन लोगों के चेहरों को देखें तथा उनकी पुकार सुनें जो हमारे ग्रह को तबाह करने वाले कई संघर्षों में बेरहमी से मौत और तबाही की योजना बनाने वालों की बेतुकी क्रूरता से परेशान है। अपनी ओर से राष्ट्रपति मत्तारेला ने संत पापा लियो के मानव व्यक्ति की केंद्रीयता और संवाद के प्रति समर्पण पर जोर दिया। उन्होंने संत पापा को भेजे गए संदेशों में कई मौकों पर इस समर्पण को दोहराया और उनकी सराहना की है। इनमें एक संदेश संत पापा लियो 14वें के परमाधीक्षक काल की शुरुआत की पहली सालगिरह और दूसरा पास्का महापर्व के उपलक्ष्य में भेजा गया था। यूक्रेन में अपनी 6 दिवसीय यात्रा के उपरांत वैटिकन के विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गालाघार ने वैटिकन मीडिया से बातचीत में कहा कि यूक्रेन के युद्ध पीड़ित लोग सब कुछ खोने के बावजूद अपने दुख दर्दों के बीच आशा के प्रेरक बने हुए हैं। महाधर्माधीश गालाघार ने मानवतावादी प्रयासों और शांति हेतु परम धर्म पीठ की प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति की और कहा कि संत पापा लियो 14वें यूक्रेन की प्रेरितिक यात्रा के निमंत्रण को गंभीरता से ले रहे हैं तथा जब समय और परिस्थितियां इसके लिए उपयुक्त होंगी तब वे अवश्य ऐसा करेंगे। 2014 से युद्धग्रस्त तथा 2022 से रूसी आक्रमण से त्रस्त यूक्रेन की 6 दिवसीय यात्रा के दौरान वैटिकन के विदेश सचिव महाधर्माधीश गालाघार ने यूक्रेन के कई राजनैतिक और प्रशासनिक नेताओं से मुलाकात की तथा कलीसियाई संस्थाओं की भेंट की। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य बेर्डिकीव के मरियम तीर्थ में 19 जुलाई को लातीनी रीति के कैथलिक कलीसियाई गिरजाघर के जीर्णोद्धार की 35वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेना था, जो संयोग से संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की प्रेरितिक यात्रा की 25वीं वर्षगांठ भी है। महाधर्माध्यक्ष ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने खुद लोगों की तकलीफ और थकान देखी, लेकिन साथ ही उनमें व्याप्त पुनर्निर्माण का उनका निश्चय, न्यायिक शांति के लिए उनकी गहरी चाहत और जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौटने की उनकी इच्छा को भी देखा। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा प्रेरितिक होने के साथ साथ कूटनैतिक भी थी, जिसके दौरान उन्होंने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की तथा कई लोगों के साक्ष्य सुने। महाधर्माधीश गालाघार ने कहा कि अधिकारियों के साथ मुलाकात में उन्हें संत पापा की अपीलों और उनके शब्दों के लिए बहुत आभार मिला, जो उनके लिए साहस का स्रोत है। उन्होंने कहा कि पहले संत पापा फ्रांसिस और अब संत पापा लियो 14वें द्वारा दर्शाई गई निकटता के लिए यूक्रेन के लोग आभारी हैं और समर्थन का अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि यह परम धर्म पीठ को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए अपने समर्पण को नवीकृत करने और अपने मानवतावादी कार्यों को जारी रखने के लिए साहस प्रदान करता है। भारत में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने भारत सरकार से देश के विदेशी फंडिंग कानून में प्रस्तावित बदलावों को संसदीय समिति को भेजने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि इन बदलावों से ईसाई संगठनों के सामाजिक और लोकोपकारी कार्य प्रभावित हो सकते हैं या उन पर रोक लग सकती है।
नई दिल्ली में मौजूद यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने कहा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में प्रस्तावित संशोधन से उन संगठनों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा हो जाएगा जो विदेशी अनुदान पर निर्भर हैं, और इससे ईसाई संस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित होंगी। फोरम ने 21 जुलाई को नई दिल्ली में भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को एक ज्ञापन दिया जिसमें संसद में जारी मानसून सेशन में इस पर बहस से पहले प्रस्तावित कानून की विस्तृत संसदीय समीक्षा करने की मांग की गई है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के उत्तर पूर्वी भारत के प्रवक्ता टोको टेकी ने 23 जुलाई को उका समाचार से कहा, मंत्री ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वे हमारे समुदाय की चिंताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे। मोदी के मंत्रिमंडल ने 18 मार्च को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को मंजूरी देते हुए कहा है कि इन बदलावों का मकसद विदेशी फंडिंग वाली कल्याणकारी गतिविधियों की निगरानी को मजबूत करना तथा पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाना है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के एक माह बाद लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं के बीच राहत कार्य जारी हैं। इनमें नाजरेत परिवार की मिशनरी धर्म बहनें कादीस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से विस्थापित बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं। आपातकालीन सहायता के साथ साथ नाजरेत परिवार की मिशनरी धर्म बहनें कादीस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से शिक्षा तक पहुंच को फिर से शुरू करना चाहती हैं, जो पुनर्निर्माण के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम है। भूकंप से 400 से अधिक स्कूली इमारतों को क्षति पहुंची है, जिससे पहले से ही मुश्किल सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हजारों बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ गई है। चुनौतियों के बावजूद धर्म बहनें इस सितंबर में काराकास में अपने स्कूल को फिर से खोलने की तैयारी कर रही हैं, जबकि देश के उत्तर पश्चिम और केंद्र में क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत की जा रही है। धर्म बहनें इस बात के प्रति दृढ़ संकल्प हैं कि आपदा प्रभावित बच्चों की शिक्षा जारी रहे। प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 24 जून 2026 को वेनेजुएला के उत्तर पूर्व और केंद्रीय इलाकों में आए भूकंप में कम से कम 5,346 लोगों की जानें चली गई हैं और 16,700 लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रसंघ का अनुमान है कि मलबे के नीचे अभी भी लगभग 50,000 लोग लापता हो सकते हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, चीन के शंघाई में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को 21वीं सदी में मानवता के लिए सबसे बड़ा अवसर बताया। साथ ही उन्होंने आगाह किया है कि यह सबसे बड़े जोखिमों में से एक भी बन सकती है। उन्होंने सरकारों और प्रौद्योगिकी कंपनियों से आग्रह किया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का लाभ केवल कुछ देशों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचे। महासचिव ने AI का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए 3 प्राथमिकताएं रेखांकित की: विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक तय करना और AI को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक टिकाऊ बनाना। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश चीन के आधिकारिक दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शंघाई में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन को संबोधित किया। UN प्रमुख ने सरकारों और प्रौद्योगिकी कंपनियों से आग्रह किया कि AI का लाभ केवल कुछ देशों या कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचे। महासचिव ने कहा कि AI का प्रशासन मुट्ठी भर देशों या कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए और हर देश को निर्णय प्रक्रिया में बराबर स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाने, साझा सुरक्षा मानक तय करने और AI को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बनाने पर जोर दिया। UN प्रमुख ने बड़ी AI कंपनियों से अपनी प्रणालियों के पर्यावरणीय प्रभाव की जानकारी सार्वजनिक करने और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से कामकाज संचालित करने का भी आह्वान किया।
2: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में इस महीने 27 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व संयुक्त जन कार्यवाही समिति JAAC कर रही है, जिसमें व्यापारी, परिवहन कर्मी, छात्र, वकील, नागरिक समाज कार्यकर्ता और अन्य समूह शामिल हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने क्षेत्रीय चुनावों से पहले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में शांति बनाए रखने की अपील की है। 27 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जून से अब तक कथित रूप से दर्जनों लोगों की मौत हुई है, इनमें अधिकतर प्रदर्शनकारी हैं। OHCHR ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई, नागरिक समाज संगठन पर प्रतिबंध और नेताओं की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। UN मानवाधिकार कार्यालय ने इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बहाल करने और मूल शिकायतों के समाधान के लिए सार्थक व समावेशी राजनीतिक संवाद का रास्ता अपनाने का आग्रह किया है।
2: संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी IOM और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR, जो एशिया प्रशांत क्षेत्रों में खतरनाक यात्राएं कर रहे संवेदनशील लोगों की तलाश व बचाव, सुरक्षित आगमन, संरक्षण एवं टिकाऊ समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकारों के साथ मिलकर काम करते हैं, ने बताया कि जून के अंत में म्यांमार के राखिन प्रांत से 2 नौकाएं रवाना हुई थीं। लगभग 250 लोगों को ले जा रही पहली नौका के रवाना होने के कुछ ही समय बाद उससे संपर्क टूट गया। वहीं 280 लोगों को दे जा रही दूसरी नौका ने 8 जुलाई को म्यांमार के अययार वाडी तट के पास डूबने की आशंका है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: म्यांमार के तट के पास दो नौकाएं पलटने की आशंका के बाद उन पर सवार लगभग 500 लोगों की सलामती को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। IOM और UNHCR ने संयुक्त चेतावनी जारी करते हुए बताया कि ये नौकाएं जून के अंत में म्यांमार के राखीन प्रांत से रवाना हुई थीं। इनमें अधिकतर रोहिंग्या समुदाय के लोग थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफान दुजैरिक कह रहे हैं, इन खबरों से स्पष्ट है कि लंबे समय से जारी संघर्ष विस्थापन और रोहिंग्या समुदायों के लिए टिकाऊ समाधान की कमी का असर कितना विनाशकारी है। म्यांमार में बढ़ता संघर्ष और बिगड़ती मानवीय स्थिति, साथ ही बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में सीमित सहायता और अवसर, लोगों को सुरक्षा की तलाश में खतरनाक समुद्री यात्राएं करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। IOM और UNHCR ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ाने, विस्थापन के कारणों से निपटने और इस घातक समुद्री मार्ग पर और मौतें होने से रोकने की अपील की है।
2: संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बुंडी बुंगियो प्रकार के इबोला संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। अधिकांश नए मामले संक्रमण की उन कड़ियों से जुड़े हैं जिनका स्रोत अब तक अज्ञात है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संक्रमण कहाँ से और कैसे फैला। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: WHO ने चेतावनी दी है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में इबोला प्रकोप राहत प्रयासों से कहीं तेजी से फैल रहा है। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेसस ने बताया कि अब तक 2,273 मामले सामने आए हैं और 796 लोगों की मौत हुई है। ये अब तक दर्ज इबोला का तीसरा सबसे बड़ा प्रकोप बन चुका है। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेसस कह रहे हैं कि DRC सरकार द्वारा इबोला महामारी की घोषणा किए 2 महीने हो गए हैं। तब से ये प्रकोप तेजी से फैला है। ये अब तक का तीसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप है और पिछले महीने में ये किसी भी पिछले प्रकोप से अधिक तेजी से बढ़ा है। ये थे WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेसस के शब्द। WHO के अनुसार DRC में संक्रमण की कड़ियां अब भी पकड़ से बाहर हैं। वहीं पड़ोसी युगांडा में आखिरी मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर आ गया है, जिसके बाद प्रकोप समाप्त घोषित करने की 42 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
2: संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों SDGs के लिए $4 ट्रिलियन की वित्तीय कमी दूर करने के उद्देश्य से नए सुधारों पर सहमति जताई है। बुधवार 15 जुलाई को अपनाए गए घोषणा पत्र में उन्होंने 2030 एजेंडा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ज्यादातर धन घरेलू स्रोतों से आता है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों यानी SDGs के लिए $4 ट्रिलियन की वित्तीय कमी दूर करने के उद्देश्य से नए सुधारों पर सहमति जताई। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के समापन पर अपनाए गए घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने 2030 एजेंडा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इन सुधारों में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाना, विकासशील देशों के लिए ऋण राहत के विकल्पों का विस्तार करना और भ्रष्टाचार से निपटना शामिल है। ECOSOC के अध्यक्ष लोक बहादुर थापा ने कहा कि ये परिणाम दिखाता है कि संवाद और समझौते के जरिए बहुपक्षवाद ठोस नतीजे दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अगले 5 वर्ष SDG के वादों को पूरा करने और 2030 के बाद के भविष्य की नींव रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को एक तार संदेश प्रेषित कर इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला के 85वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं अर्पित कर अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया। तार संदेश में संत पापा लियो 14वें ने इटली के कलीसियाई और सामाजिक जीवन पर लगातार ध्यान देने के लिए राष्ट्रपति महोदय के प्रति गहन आभार व्यक्त किया। इस संदेश में राष्ट्रपति के परिवार, उनके सहयोगियों और उनके प्रिय देश इटली के लिए संत पापा लियो ने शुभकामनाओं के साथ साथ अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया। संत पापा ने संपूर्ण इटली एवं राष्ट्रपति मत्तारेला को इटली के संतों असीसी के संत फ्रांसिस और सियेना की संत कैथरीन के संरक्षण के सुपुर्द भी किया। स्मरण रहे कि संत पापा लियो 14वें ने 14 अक्टूबर 2025 को क्विरिनाले पैलेस अर्थात इटली के राष्ट्रपति भवन का दौरा किया था, जहां उन्होंने यूरोप में परिवारों के लिए बहुपक्षीयवाद और समर्थन को महत्वपूर्ण बताते हुए इटली की जन्म दर में निरंतर आती गिरावट के प्रति ध्यान आकर्षित कराया था। इस अवसर पर उन्होंने विश्व में व्याप्त युद्धों का भी जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी कि वे उन लोगों के चेहरों को देखें तथा उनकी पुकार सुनें जो हमारे ग्रह को तबाह करने वाले कई संघर्षों में बेरहमी से मौत और तबाही की योजना बनाने वालों की बेतुकी क्रूरता से परेशान हैं। अपनी ओर से राष्ट्रपति मत्तारेला ने संत पापा लियो के मानव व्यक्ति की केंद्रीयता और संवाद के प्रति समर्पण पर जोर दिया। उन्होंने संत पापा को भेजे गए संदेशों में कई मौकों पर इस समर्पण को दोहराया और उनकी सराहना की है। इनमें एक संदेश संत पापा लियो 14वें के परमाधीक्षक काल की शुरुआत की पहली सालगिरह और दूसरा पास्का महापर्व के उपलक्ष्य में भेजा गया था। यूक्रेन में अपनी 6 दिवसीय यात्रा के उपरांत वैटिकन के विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गालाघार ने वैटिकन मीडिया से बातचीत में कहा कि यूक्रेन के युद्ध पीड़ित लोग सब कुछ खोने के बावजूद अपने दुख दर्दों के बीच आशा के प्रेरक बने हुए हैं। महाधर्माधीश गालाघार ने मानवतावादी प्रयासों और शांति हेतु परम धर्म पीठ की प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति की और कहा कि संत पापा लियो 14वें यूक्रेन की प्रेरित यात्रा के निमंत्रण को गंभीरता से ले रहे हैं तथा जब समय और परिस्थितियां इसके लिए उपयुक्त होंगी तब वे अवश्य ऐसा करेंगे। 2014 से युद्धग्रस्त तथा 2022 से रूसी आक्रमण से त्रस्त यूक्रेन की 6 दिवसीय यात्रा के दौरान वैटिकन के विदेश सचिव महाधर्माधीश गालाघार ने यूक्रेन के कई राजनैतिक और प्रशासनिक नेताओं से मुलाकात की तथा कलीसियाई संस्थाओं की भेंट की। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य बेर्डिकीव के मरियम तीर्थ में 19 जुलाई को लातीनी रीति के कैथलिक कलीसियाई गिरजाघर के जीर्णोद्धार की 35वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेना था, जो संयोग से संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की प्रेरित यात्रा की 25वीं वर्षगांठ भी है। महाधर्माध्यक्ष ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने खुद लोगों की तकलीफ और थकान देखी, लेकिन साथ ही उनमें व्याप्त पुनर्निर्माण का उनका निश्चय, न्यायिक शांति के लिए उनकी गहरी चाहत और जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौटने की उनकी इच्छा को भी देखा। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा प्रेरितिक होने के साथ साथ कूटनैतिक भी थी, जिसके दौरान उन्होंने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की तथा कई लोगों के साक्ष्य सुने। महाधर्माधीश गालाघार ने कहा कि अधिकारियों के साथ मुलाकात में उन्हें संत पापा की अपीलों और उनके शब्दों के लिए बहुत आभार मिला, जो उनके लिए साहस का स्रोत है। उन्होंने कहा कि पहले संत पापा फ्रांसिस और अब संत पापा लियो 14वें द्वारा दर्शाई गई निकटता के लिए यूक्रेन के लोग आभारी हैं और समर्थन का अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि यह परम धर्म पीठ को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए अपने समर्पण को नवीकृत करने और अपने मानवतावादी कार्यों को जारी रखने के लिए साहस प्रदान करता है। भारत में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने भारत सरकार से देश के विदेशी फंडिंग कानून में प्रस्तावित बदलावों को संसदीय समिति को भेजने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि इन बदलावों से ईसाई संगठनों के सामाजिक और लोकोपकारी कार्य प्रभावित हो सकते हैं या उन पर रोक लग सकती है।
नई दिल्ली में मौजूद यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने कहा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में प्रस्तावित संशोधन से उन संगठनों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा हो जाएगा जो विदेशी अनुदान पर निर्भर हैं, और इससे ईसाई संस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित होंगी। फोरम ने 21 जुलाई को नई दिल्ली में भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को एक ज्ञापन दिया जिसमें संसद में जारी मानसून सेशन में इस पर बहस से पहले प्रस्तावित कानून की विस्तृत संसदीय समीक्षा करने की मांग की गई है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के उत्तर पूर्वी भारत के प्रवक्ता टोको टेकी ने 23 जुलाई को उका समाचार से कहा, मंत्री ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वे हमारे समुदाय की चिंताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे। मोदी के मंत्रिमंडल ने 18 मार्च को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को मंजूरी देते हुए कहा है कि इन बदलावों का मकसद विदेशी फंडिंग वाली कल्याणकारी गतिविधियों की निगरानी को मजबूत करना तथा पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाना है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के एक माह बाद लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं के बीच राहत कार्य जारी हैं। इनमें नाजरेत परिवार की मिशनरी धर्म बहने कादीस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से विस्थापित बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं। आपातकालीन सहायता के साथ साथ नाजरेत परिवार की मिशनरी धर्म बहने कादीस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से शिक्षा तक पहुंच को फिर से शुरू करना चाहती हैं, जो पुनर्निर्माण के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम है। भूकंप से 400 से अधिक स्कूली इमारतों को क्षति पहुंची है, जिससे पहले से ही मुश्किल सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हजारों बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ गई है। चुनौतियों के बावजूद धर्म बहनें इस सितंबर में काराकास में अपने स्कूल को फिर से खोलने की तैयारी कर रही हैं, जबकि देश के उत्तर पश्चिम और केंद्र में क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत की जा रही है। धर्म बहनें इस बात के प्रति दृढ़ संकल्प हैं कि आपदा प्रभावित बच्चों की शिक्षा जारी रहे। प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 24 जून 2026 को वेनेजुएला के उत्तर पूर्व और केंद्रीय इलाकों में आए भूकंप में कम से कम 5,346 लोगों की जानें चली गई हैं और 16,700 लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रसंघ का अनुमान है कि मलबे के नीचे अभी भी लगभग 50,000 लोग लापता हो सकते हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: श्री रोम और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण,

0: की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम।

0: लिए प्रार्थना कर।
1: ईश्वर की पवित्र माँ
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: ख्रिस्त की माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: ईश्वरीय कृपा की माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: अति निर्मल माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: अति शुद्ध माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: कुंवारी माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: निष्कलंक माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: प्रिय माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: प्रशंसनीय माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: सुसमति की माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: सृष्टिकर्ता की माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: मुक्तिदाता की माता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: अति चौकस कुमारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: आदरणीय कुमारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: स्तुति योग्य कुमारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: शक्तिमती कुमारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: दयालु कुमारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: धर्मनिष्ठ कुमारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: हमारे आनंद का मूल
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: पवित्र आत्मा का मंदिर
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: आदरणीय पात्र
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: भक्ति का उत्तम पात्र
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: आध्यात्मिक गुलाब
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: दाऊद का गढ़
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: हस्तिदंत का गढ़
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: स्वर्ण मंदिर
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: संधि की मंजूषा
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: भोर का तारा
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: रोगियों का स्वास्थ्य
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: पापियों की शरण
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: दुखियों का दिलासा
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: ख्रिस्तियों की सहायता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: स्वर्गदूतों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: धर्म पुरखों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: नवियों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: प्रेरितों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: शहीदों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: धर्मवीरों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: संतों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: अति पवित्र माला की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: शांति की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है
0: प्रभु हमें क्षमा कर।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है
0: प्रभु हमारी सुन।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है
0: हम पर दया कर।
1: हम प्रार्थना करें।
0: हे प्रभु ईश्वर कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा आमेन।
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, ईश्वर ने हमें विभिन्न प्रकार के धन संपत्तियों से विभूषित किया है। हमारे लिए ईश्वर से मिली धन संपत्तियाँ हमारी योग्यताएं और हमारी क्षमताएं हैं, जिनके द्वारा हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए फल उत्पन्न करने को कहे जाते हैं। ईश्वर हमें अपने हृदय के भंडार से उत्तम चीज़ों को निकालकर उन्हें जन सामान्य की भलाई हेतु उपयोग करने को कहते हैं, और ऐसा करने के द्वारा हम अपने जीवन के कार्यों द्वारा ईश्वर की सेवा, पूजा और महिमा करते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 17वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार में हमारे लिए विभिन्न दृष्टांतों की चर्चा की गई है, जिनके द्वारा यीशु ख्रीस्त हमें स्वर्ग राज्य के रहस्य को समझाने का प्रयास करते हैं, जो हमारे लिए अक्षय निधि है। हमें ईश्वर उस मूल्यवान अनंत निधि की खोज करने का आह्वान करते हैं, क्योंकि हम उसी के लिए बनाए गए हैं। आइए हम ईश वचनों का श्रवण करते हुए अपने जीवन के आत्म परख करें कि वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें ईश्वर ने हमें अनमोल खजाने के रूप में सौंपा है। वे कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जिन्हें ईश्वर ने मोतियों के रूप में हमारे हृदय रूपी खेतों में गाड़ कर रखा है। क्या हम अपने हृदय की गहराई में उतरते और उन कीमती मोतियों को खोजने का प्रयास करते हैं? हम अपने हृदय रूपी भंडार से किन किन चीज़ों को निकालते और उन्हें ईश्वर की महिमा हेतु लोगों की सेवा में उपयोग करते हैं?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल ले लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है।
0: श्रोताओं, ईश्वर के सुमधुर वचन हमें अपने हृदय के भंडार से अच्छी चीजों को खोज कर निकालने में मदद करे, जिससे हम उनके उपयोग द्वारा ईश्वर की बनाई गई सृष्टि और ईश प्रजा की सेवा हेतु उनका व्यय कर सकें, व्यय कर अपने जीवन को सार्थक बना सकें, जिनके लिए हमें यह सुंदर जीवन दिया गया है। श्रोताओं, राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए एक अनमोल दिव्य खजाने, विवेकपूर्ण समझदारी की चर्चा करता है, जिसकी मांग राजा सुलेमान अपने लिए ईश्वर से अपने को सौंपी गई ईश प्रजा की सेवा हेतु करते हैं, देख रेख हेतु करते हैं। राजा सुलेमान की मांग से ईश्वर अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें वे सारी अन्य चीज़ें प्रदान करते हैं जो उन्हें राजपाट संचालन हेतु जरूरी था। यहाँ गौर करने की एक बात यह है कि राजा सुलेमान अपनी प्रसिद्धि और ख्याति हेतु विवेक की मांग नहीं करते हैं, बल्कि वे अपनी प्रजा लोगों की सेवा हेतु, लोगों की देख रेख हेतु यह मांग करते हैं, जिससे वे अपनी प्रजा का उचित न्याय कर सकें। राजा सुलेमान की मांग ईश्वर को प्यारी लगती है और वे न केवल विवेक बल्कि अन्य सारी आशीष और कृपाओं से उन्हें विभूषित करते हैं। इस तरह राजा सुलेमान की मांग में हम सेवा के भाव को पाते हैं, जिसमें हमारे लिए उनकी नम्रता प्रकट होती है। इस भांति राजा सुलेमान ईश्वरीय प्रज्ञा से पोषित अपनी प्रजा की सेवा और देख रेख विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं, जो उन्हें ख्याति और प्रसिद्धि प्रदान करती है, जिसकी चर्चा हम राजाओं के ग्रंथ में पाते हैं। श्रोताओं, आज का दूसरा पाठ हमारे लिए ईश्वरीय अनुग्रह की चर्चा करता है, जो सदैव हमारे जीवन में बना रहता है, क्योंकि उन्होंने हमें अपने कार्यों के लिए चुना और बुलाया है। ईश्वर ने जिन लोगों को अपनी प्रेरिताई हेतु नियुक्त किया और बुलाया है, वे सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं। ईश्वर ऐसा इसलिए करते हैं कि वे हमारे द्वारा अपने कार्यों और अपने उद्देश्य को परिपूर्णता प्रदान करना चाहते हैं। अपने कार्यों में हमारी सहभागिता हेतु उन्होंने हमें पापों से मुक्ति प्रदान की और हमें महिमान्वित किया है। इस भांति ईश्वर ने हमें अपनी महिमा के भागीदार बनाया है, जिससे हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को ईश्वरीय महिमा के भागीदार बना सकें, उन्हें उस राज्य की ओर अग्रसर होने में मदद कर सकें जहां अनंत प्रेम, खुशी और शांति राज करती है। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में यीशु हमारे लिए उसी ईश्वरीय राज्य की चर्चा विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम करते हैं, जहां हम खेत में बहुमूल्य खजाने, उत्तम मोती और समुद्र में फेंके जाने वाले जाल का जिक्र सुनते हैं। अपने मानवीय स्वभाव में हम कीमती वस्तुओं को अपने जीवन का अंग बनाने की चाह रखते हैं, क्योंकि वे हमारे लिए प्रतिष्ठा और सम्मान का कारण बनती हैं। उनके द्वारा हम जीवन की समृद्धि का एहसास करते हैं। हमारे जीवन की असल समृद्धि उस अनंत जीवन को प्राप्त करने में है, जिसके लिए हम सभी बनाए गए हैं। उस निधि को ईश्वर ने हमारे हृदय रूपी खेत में स्थापित किया है, जिसे पाने हेतु हमें अपने हृदय की गहराई में उतरने और उसमें कार्य करने की मांग करती है। उस खजाने की प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन के अन्य सारी चीज़ों को बेचने की ज़रूरत है। हम अपने जीवन की सारी चीज़ों को बेचने की स्थिति में तब आते हैं जब हमें अनंत जीवन के मूल्य का एहसास होता है। ईश्वरीय विवेक में हम अपने जीवन में ईश्वर के द्वारा दिए गए अनंत जीवन रूपी धन और उसके लिए कार्य करने के जज्बे को प्राप्त करते हैं, क्योंकि विवेक हमें अनंत जीवन के महत्व और अर्थ को समझने में मदद करता है। आइए हम पवित्र आत्मा, ज्ञान और विवेक के स्रोत से निवेदन करें कि वे हमें अपनी प्रज्ञा से पोषित करें, जिससे हम अपने जीवन को उनकी प्रेरणा में संचालित कर सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने एशिया के धर्माध्यक्षों से कहा है कि वे अपने देशों में ईश्वर की उपस्थिति के बड़े चिन्ह बने। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ की 12वीं महासभा के लिए एकत्रित धर्माध्यक्षों से पोप ने कहा कि वे अपने देशों में ईश्वर की उपस्थिति के बड़े चिन्ह बने और एशिया में कार्तिक कलीसिया के जीवन एवं भविष्य पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें। पोप ने कहा, जब आप एशिया में कार्तिक कलीसिया के जीवन एवं भविष्य पर असर डालने वाले जरूरी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एकत्रित हैं, मैं आपको अपने आध्यात्मिक सामीप्य का भरोसा देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस मिलन में पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करें एवं रास्ता दिखाएं। पोप लियो ने यह बात शनिवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में 20 से 26 जुलाई तक होने वाली एशिया के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं महासभा के लिए एकत्रित धर्माध्यक्षों और सदस्यों को प्रेषित वीडियो संदेश में कही है। अपने संदेश में पोप ने याद दिलाया कि एशियाई धर्माध्यक्षों की महासभा के लिए चुनी गई विषय वस्तु येसु के नथनाइल से कही गई बात से ली गई है, तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। उन्होंने कहा कि फिलिप और नथनाइल को अपने पीछे आने और अपने शिष्य बनने के लिए बुलाकर हमारे प्रभु खुद को ईश्वर और मानव के बीच एक विशेष मध्यस्थ के रूप में प्रकट करते हैं। पोप लियो ने आगे कहा, आज उनके शिष्यों के रूप में हम जानते हैं कि येसु न सिर्फ ईश्वर के साथ हमारी एकता के मध्यस्थ हैं, बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ भी। पोप ने महासभा में शामिल सभी प्रतिभागियों को याद दिलाया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समय में मानव की सुरक्षा पर अपने विश्व प्रेरित पत्र मैनिफिका ओमानिटास में उन्होंने लिखा है कि ख्रिस्त एकता का स्रोत ख्रिस्त के रहस्य में है और यह संस्कारों खासकर पौत्र यूखरिस्त में हमारी सहभागिता से निकलती है। पोप ने आगे कहा, इसी कारण से मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं कि आप अपने स्थानीय कलीसियाओं में यूखरिस्तीय आध्यात्मिकता को बढ़ावा दें, यानी कलीसियाई एकता की आध्यात्मिकता जो यूखरिस्त में हमारे प्रभु ईश्वर के वरदान से प्रवाहित प्रेम पर आधारित हो। उन्होंने कहा, इस तरह मुझे उम्मीद है कि स्थानीय कलीसियाओं के अंदर और उनके बीच सहभागिता के रिश्ते मजबूत होंगे और आपके देशों में ईश्वर की उपस्थिति के महान चिन्ह बनेंगे ताकि आप पूरे एशिया में एक साथ पुल बनाने वाले बन सकें। अंत में संत पापा ने एकत्रित सभी धर्माध्यक्षों एवं उनकी बातचीत को कलीसिया की मां धन्य कुमारी मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट किया।
1: संत पापा लियो 14वें ने महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टोफ जाकिया एल कासिस को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए परम धर्म पीठ का स्थायी पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। आज शनिवार 25 जुलाई को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने इस नियुक्ति की घोषणा की। लेबनान में जन्मे महाधर्माध्यक्ष एल कासिस अब तक यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन में प्रेरितिक राजदूत के साथ साथ अरब पेनिनसुला में प्रेरितिक प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं। उधर वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट ने कल 24 जुलाई को ब्राजील के साओ पाओलो राज्य के अपारसिदा तीर्थालय में ब्राजीलियन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के संचार के प्रेरितिक देखभाल समिति की नवी राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर संबोधित किया। सुरक्षा ही मुख्य शब्द है, उस मेलजोल की सुरक्षा करना जो हमें जोड़ता है, हर इंसान के हुनर, उनकी कहानियां, उनके मिलन, अच्छाई, सुंदरता, मुक्ति की उम्मीद, छुटकारा, तब भी जब सब कुछ गलत होता दिख रहा हो। हर तरह के संचार के जरिए हम चलते फिरते मिशनरी शिष्य हैं, यानी एक सफर पर हैं, लेकिन यह उस रास्ते से अलग है जो हर चीज को हिसाब किताब, व्यापार या खरीद बिक्री तक सीमित कर देता है। भविष्य को देखने, बताने, याद रखने, बनाने का बताकर दूसरा तरीका चुनना, यह दूसरा रास्ता है जिसका जिक्र वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉक्टर पाओलो रूफिनी ने उस सम्मेलन में किया जो कल दोपहर 24 जुलाई को ब्राजील के साओ पाओलो राज्य के अपारसिदा तीर्थालय में ब्राजीलियन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के संचार के प्रेरितिक देखभाल समिति की नवी राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ, जिसका शीर्षक था सुसमाचार प्रचार की गति, संचार का प्रेरितिक आयाम। डॉक्टर रुफिनी ने कहा, हम रुक नहीं सकते, हम अपने समय की चुनौतियों से पीछे नहीं रह सकते। एक दिशा है, एक लक्ष्य है जिसे पाना है और इसे मिलकर करना होगा। यह सभी संचार माध्यमों के जरिए मेलजोल बनाने, मिलकर काम करने वाली परियोजना बनाने, अलग अलग देशों और शहरों में काम करने वाली टीमों के साथ काम करने, उस एकता को दिखाने का समय है जिसमें सब कुछ मौजूद है। एक दूसरे की सेवा में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने, दुनिया को एक वैश्विक सूचना प्रणाली देने का समय है जो सच की खोज और उसे साझा करने पर आधारित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपने गहरे विचार में प्रीफेक्ट ने कहा, हमारे संचार में यह महान और अनोखा गुण है जो अमूर्त नहीं बल्कि असली संबंध बनाता है। यह आर्थिक फायदे से नहीं बल्कि अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता को साझा करने के प्यार से चलता है। उन्होंने कहा, गवाही पर आधारित संचार में खुद को देने, सच में मेलजोल बनाने, लोगों को जोड़ने, उन्हें एक अनुभव में हिस्सा लेने, अकेलेपन से आजाद करने और एक अच्छे माहौल के हिस्से के रूप में खुद को पहचानने में मदद करने की ताकत होती है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, ईश्वर ने हमें विभिन्न प्रकार के धन संपत्तियों से विभूषित किया है। हमारे लिए ईश्वर से मिली धन संपत्तियाँ हमारी योग्यताएँ और हमारी क्षमताएँ हैं, जिनके द्वारा हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए फल उत्पन्न करने को कहे जाते हैं। ईश्वर हमें अपने हृदय के भंडार से उत्तम चीज़ों को निकालकर उन्हें जन सामान्य की भलाई हेतु उपयोग करने को कहते हैं, और ऐसा करने के द्वारा हम अपने जीवन के कार्यों द्वारा ईश्वर की सेवा, पूजा और महिमा करते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 17वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार में हमारे लिए विभिन्न दृष्टांतों की चर्चा की गई है, जिनके द्वारा यीशु ख्रीस्त हमें स्वर्ग राज्य के रहस्य को समझाने का प्रयास करते हैं, जो हमारे लिए अक्षय निधि है। हमें ईश्वर उस मूल्यवान अनंत निधि की खोज करने का आह्वान करते हैं, क्योंकि हम उसी के लिए बनाए गए हैं। आइए हम ईश वचनों का श्रवण करते हुए अपने जीवन की आत्म परख करें कि वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें ईश्वर ने हमें अनमोल खजाने के रूप में सौंपा है। वे कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जिन्हें ईश्वर ने मोतियों के रूप में हमारे हृदय रूपी खेतों में गाड़ कर रखा है। क्या हम अपने हृदय की गहराई में उतरते और उन कीमती मोतियों को खोजने का प्रयास करते हैं? हम अपने हृदय रूपी भंडार से किन किन चीज़ों को निकालते और उन्हें ईश्वर की महिमा हेतु लोगों की सेवा में उपयोग करते हैं?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल ले लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है।
0: श्रोताओं, ईश्वर के सुमधुर वचन हमें अपने हृदय के भंडार से अच्छी चीजों को खोज कर निकालने में मदद करे, जिससे हम उनके उपयोग द्वारा ईश्वर की बनाई गई सृष्टि और ईश प्रजा की सेवा हेतु उनका व्यय कर सकें, व्यय कर अपने जीवन को सार्थक बना सकें, जिनके लिए हमें यह सुंदर जीवन दिया गया है। श्रोताओं, राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए एक अनमोल दिव्य खजाने विवेकपूर्ण समझदारी की चर्चा करता है, जिसकी मांग राजा सुलेमान अपने लिए ईश्वर से अपने को सौंपी गई ईश प्रजा की सेवा हेतु करते हैं, देख रेख हेतु करते हैं। राजा सुलेमान की मांग से ईश्वर अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें वे सारी अन्य चीज़ें प्रदान करते हैं जो उन्हें राजपाट संचालन हेतु जरूरी था। यहाँ गौर करने की एक बात यह है कि राजा सुलेमान अपनी प्रसिद्धि और ख्याति हेतु विवेक की मांग नहीं करते हैं, बल्कि वे अपनी प्रजा लोगों की सेवा हेतु, लोगों की देख रेख हेतु यह मांग करते हैं, जिससे वे अपनी प्रजा का उचित न्याय कर सकें। राजा सुलेमान की मांग ईश्वर को प्यारी लगती है और वे न केवल विवेक बल्कि अन्य सारी आशीष और कृपाओं से उन्हें विभूषित करते हैं। इस तरह राजा सुलेमान की मांग में हम सेवा के भाव को पाते हैं, जिसमें हमारे लिए उनकी नम्रता प्रकट होती है। इस भांति राजा सुलेमान ईश्वरीय प्रज्ञा से पोषित अपनी प्रजा की सेवा और देख रेख विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं, जो उन्हें ख्याति और प्रसिद्धि प्रदान करती है, जिसकी चर्चा हम राजाओं के ग्रंथ में पाते हैं। श्रोताओं, आज का दूसरा पाठ हमारे लिए ईश्वरीय अनुग्रह की चर्चा करता है, जो सदैव हमारे जीवन में बना रहता है, क्योंकि उन्होंने हमें अपने कार्यों के लिए चुना और बुलाया है। ईश्वर ने जिन लोगों को अपनी प्रेरिताई हेतु नियुक्त किया और बुलाया है, वे सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं। ईश्वर ऐसा इसलिए करते हैं कि वे हमारे द्वारा अपने कार्यों और अपने उद्देश्य को परिपूर्णता प्रदान करना चाहते हैं। अपने कार्यों में हमारी सहभागिता हेतु उन्होंने हमें पापों से मुक्ति प्रदान की और हमें महिमान्वित किया है। इस भांति ईश्वर ने हमें अपनी महिमा के भागीदार बनाया है, जिससे हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को ईश्वरीय महिमा के भागीदार बना सकें, उन्हें उस राज्य की ओर अग्रसर होने में मदद कर सकें जहां अनंत प्रेम, खुशी और शांति राज करती है। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में यीशु हमारे लिए उसी ईश्वरीय राज्य की चर्चा विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम करते हैं, जहां हम खेत में बहुमूल्य खजाने, उत्तम मोती और समुद्र में फेंके जाने वाले जाल का जिक्र सुनते हैं। अपने मानवीय स्वभाव में हम कीमती वस्तुओं को अपने जीवन का अंग बनाने की चाह रखते हैं, क्योंकि वे हमारे लिए प्रतिष्ठा और सम्मान का कारण बनती हैं। उनके द्वारा हम जीवन की समृद्धि का एहसास करते हैं। हमारे जीवन की असल समृद्धि उस अनंत जीवन को प्राप्त करने में है, जिसके लिए हम सभी बनाए गए हैं। उस निधि को ईश्वर ने हमारे हृदय रूपी खेत में स्थापित किया है, जिसे पाने हेतु हमें अपने हृदय की गहराई में उतरने और उसमें कार्य करने की मांग करती है। उस खजाने की प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन के अन्य सारी चीज़ों को बेचने की ज़रूरत है। हम अपने जीवन की सारी चीज़ों को बेचने की स्थिति में तब आते हैं जब हमें अनंत जीवन के मूल्य का एहसास होता है। ईश्वरीय विवेक में हम अपने जीवन में ईश्वर के द्वारा दिए गए अनंत जीवन रूपी धन और उसके लिए कार्य करने के जज्बे को प्राप्त करते हैं, क्योंकि विवेक हमें अनंत जीवन के महत्व और अर्थ को समझने में मदद करता है। आइए हम पवित्र आत्मा, ज्ञान और विवेक के स्रोत से निवेदन करें कि वे हमें अपनी प्रज्ञा से पोषित करें, जिससे हम अपने जीवन को उनकी प्रेरणा में संचालित कर सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने एशिया के धर्माध्यक्षों से कहा है कि वे अपने देशों में ईश्वर की उपस्थिति के बड़े चिन्ह बने। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ की 12वीं महासभा के लिए एकत्रित धर्माध्यक्षों से पोप ने कहा कि वे अपने देशों में ईश्वर की उपस्थिति के बड़े चिन्ह बने और एशिया में कार्तिक कलीसिया के जीवन एवं भविष्य पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें। पोप ने कहा, जब आप एशिया में कार्तिक कलीसिया के जीवन एवं भविष्य पर असर डालने वाले जरूरी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एकत्रित हैं, मैं आपको अपने आध्यात्मिक सामीप्य का भरोसा देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस मिलन में पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करें एवं रास्ता दिखाएं। पोप लियो ने यह बात शनिवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में 20 से 26 जुलाई तक होने वाली एशिया के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं महासभा के लिए एकत्रित धर्माध्यक्षों और सदस्यों को प्रेषित वीडियो संदेश में कही है। अपने संदेश में पोप ने याद दिलाया कि एशियाई धर्माध्यक्षों की महासभा के लिए चुनी गई विषय वस्तु येसु के नथनायल से कही गई बात से ली गई है। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। उन्होंने कहा कि फिलिप और नथनायल को अपने पीछे आने और अपने शिष्य बनने के लिए बुलाकर हमारे प्रभु खुद को ईश्वर और मानव के बीच एक विशेष मध्यस्थ के रूप में प्रकट करते हैं। पोप लियो ने आगे कहा, आज उनके शिष्यों के रूप में हम जानते हैं कि येसु न सिर्फ ईश्वर के साथ हमारी एकता के मध्यस्थ हैं बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ भी। पोप ने महासभा में शामिल सभी प्रतिभागियों को याद दिलाया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समय में मानव की सुरक्षा पर अपने विश्व प्रेरित पत्र मैनिफिका ओमानिटास में उन्होंने लिखा है कि ख्रिस्त एकता का स्रोत ख्रिस्त के रहस्य में है और यह संस्कारों खासकर पौत्र यूखरिस्त में हमारी सहभागिता से निकलती है। पोप ने आगे कहा, इसी कारण से मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं कि आप अपने स्थानीय कलीसियाओं में यूखरिस्टी आध्यात्मिकता को बढ़ावा दें, यानी कलीसियाई एकता की आध्यात्मिकता जो यूखरिस्ट में हमारे प्रभु ईश्वर के वरदान से प्रवाहित प्रेम पर आधारित हो। उन्होंने कहा, इस तरह मुझे उम्मीद है कि स्थानीय कलीसियाओं के अंदर और उनके बीच सहभागिता के रिश्ते मजबूत होंगे और आपके देशों में ईश्वर की उपस्थिति के महान चिन्ह बनेंगे ताकि आप पूरे एशिया में एक साथ पुल बनाने वाले बन सकें। अंत में संत पापा ने एकत्रित सभी धर्माध्यक्षों एवं उनकी बातचीत को कलीसिया की मां धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट किया।
1: संत पापा लियो 14वें ने महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टोफ जाकिया एल कसिस को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए परम धर्म पीठ का स्थायी पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। आज शनिवार 25 जुलाई को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने इस नियुक्ति की घोषणा की। लेबनान में जन्मे महाधर्माध्यक्ष एल कसिस अब तक यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन में प्रेरितिक राजदूत के साथ साथ अरब पेनिनसुला में प्रेरितिक प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं। उधर वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट ने कल 24 जुलाई को ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के अपारसिदा तीर्थालय में ब्राजीलियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के संचार के प्रेरितिक देखभाल समिति की नवी राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर संबोधित किया। सुरक्षा ही मुख्य शब्द है, उस मेलजोल की सुरक्षा करना जो हमें जोड़ता है। हर इंसान के हुनर, उनकी कहानियां, उनके मिलन, अच्छाई, सुंदरता, मुक्ति की उम्मीद, छुटकारा, तब भी जब सब कुछ गलत होता दिख रहा हो। हर तरह के संचार के जरिए हम चलते फिरते मिशनरी शिष्य हैं, यानी एक सफर पर हैं। लेकिन यह उस रास्ते से अलग है जो हर चीज को हिसाब किताब, व्यापार या खरीद बिक्री तक सीमित कर देता है। भविष्य को देखने, बताने, याद रखने, बनाने का बताकर दूसरा तरीका चुनना, यह दूसरा रास्ता है जिसका जिक्र वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉक्टर पाओलो रूफिनी ने उस सम्मेलन में किया जो कल दोपहर 24 जुलाई को ब्राजील के साओ पाओलो राज्य के अपारसिदा तीर्थालय में ब्राजीलियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के संचार के प्रेरितिक देखभाल समिति की नवी राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ, जिसका शीर्षक था सुसमाचार प्रचार की गति, संचार का प्रेरितिक आयाम। डॉक्टर रुफिनी ने कहा, हम रुक नहीं सकते, हम अपने समय की चुनौतियों से पीछे नहीं रह सकते। एक दिशा है, एक लक्ष्य है जिसे पाना है और इसे मिलकर करना होगा। यह सभी संचार माध्यमों के जरिए मेलजोल बनाने, मिलकर काम करने वाली परियोजना बनाने, अलग अलग देशों और शहरों में काम करने वाली टीमों के साथ काम करने, उस एकता को दिखाने का समय है जिसमें सब कुछ मौजूद है। एक दूसरे की सेवा में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने, दुनिया को एक वैश्विक सूचना प्रणाली देने का समय है जो सच की खोज और उसे साझा करने पर आधारित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपने गहरे विचार में प्रीफेक्ट ने कहा, हमारे संचार में यह महान और अनोखा गुण है जो अमूर्त नहीं बल्कि असली संबंध बनाता है। यह आर्थिक फायदे से नहीं बल्कि अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता को साझा करने के प्यार से चलता है। उन्होंने कहा, गवाही पर आधारित संचार में खुद को देने, सच में मेलजोल बनाने, लोगों को जोड़ने, उन्हें एक अनुभव में हिस्सा लेने, अकेलेपन से आजाद करने और एक अच्छे माहौल के हिस्से के रूप में खुद को पहचानने में मदद करने की ताकत होती है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।